0: रेडियो सैलून सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलून समाचार को सहयात्री।

0: आज प्यार की होड़ी ले।
1: दिल बोले तो
2: हार्ट हार्ट
1: हमारा यार सौदा सौदा
2: ओहो
0: दोनों डील करती।

बढ़ो सुस्ताई सुस्ताई साजा भौतिक जगत में नहर नारी ले प्रगति पथ को।

हो दोस्रो अध्यायले गरिकन यथामति विस्तार गरियो। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे राधे सदामोदर दीननाथ मम पाई संसार समुद्र मग्नम नमो नमते पुरुषोत्तमाय। नारायण ओ श्री पुरुषोत्तमार्पणमस्तु।

सुग्रीव मंत्री लेता प्रभु जी को दिल खुश गराए तस। हे राम रावण लाई मारी सहजई सीता जी लाई यहाँ।

मेरो नाम सूर्यबार थापा भिनपा तीन तारथलीबाट म हनुमान चालिसा रेकर्ड गर्न चाहन्छु। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमनम गुरु सुधारी वर्ण रघुवर विमल जस जो दायको फलचारी बुद्धि हिन दोनों जानकी सुनिर पवन कुमार बलबुद्धि विद्या देहु मई हरहु कलश विकार ओम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपिश तिम्रो उजागर रामदूत अद्वैत बलधाम अञ्जनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार्य स्मृति की संगी कंचन वर्ण विरास वेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ बर्ज और ध्वज विराजयी कांधे मुझे जनव साजयी शंकर सुमन केसर नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन विद्यावान गुणियाति चातुर राम काज करिबे को आतुर पर्व चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप दरी से दिखवाया विकट रूप बदल लंगा दरवाया हेम रूप दरी असुर संहारी रामचंद्र की काज संवारी लाए सजीवन लखन जी आये श्री रघुवीर हरसिउर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतम भाई सहज बदन तुम्हारा जस गावे असक श्रीपति कंठ लगावे सनकादि ब्रह्मादि मुनिषा नारद सारद सहित ऐसा हेम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि गोविंद कैसे के कहते तुम उपकार सुग्रीव किना राम मिलाये राजपद दिना तुम्हारो मंत्र भी विषण मान लंकेश्वर भय सब जग जान युग सहस्र योजन पर भानु लिल्यो ताई मधु फल जानु प्रभु मुन्द्री का मेली मुखमाई जल्दी लागी गए अतर जनाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुबारे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिना पैसारे सब सुखलाई तुम्हारी शरणा तुम रक्षे काम को डरना आपन तेज समारोह आपे तीनों लोग हागते कापे भूत पिता से निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हर सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कमर वचन ध्यान जलावे सब पर राम तब श्री राजा इनके काज सकल तुम साजा अवरो मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारो जुग प्रताप तुम्हारा है परसी जगद जियारा साधु संत के तुम रखवारी असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नमनिधि के दाता असवर दिन जान की माता राम रसायन तुम्हारी पासा सदा रो रघुपति दासा तुम्हारी भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त खाई और देवता चिदन धरई हनुमत से सर्वसु करई संकट कटई मेरे सभी पीरा जो सुमिरई हनुमत बलबीरा जय जय जय हनुमान गोसाई कृपा कर हूँ गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई छुटी बंदी माँ सुख होई जो ये पड़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सनाहरी चेरा किजनाथ हृदय महडेरा ओम पवन तनय संकट हरण मंगल मृत्यु रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसुंश्रभु सियावर रामचंद्र शंकर जी बाजा जय हनुमान जय बजरंगबली।